0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा

0: बहा का अर्थ क्या होता है?
1: विमलेश जी, बहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
0: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बहा
0: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
0: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है?
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओ, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को,
3: पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसलकर गिर गया।
3: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
3: अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला

0: के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहां जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
2: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
3: जी महाराज।
2: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
2: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
2: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
4: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
5: महाराज की जय! महाराज की जय!
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
6: उसका ये दुस्साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
7: आज मैं राजा बनूंगी।
8: आज मैं राजा बनूंगा।
9: आज तो मैं राजा बनूंगा।
10: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
7: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
3: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
7: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
3: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
8: हमने तो देखा है।
11: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
7: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
3: महाराज की जय हो।
12: जय हो।
3: महाराज की जय हो। जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
2: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है, और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
13: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
0: शिला जब खोदकर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंह

0: सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
1: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
2: चोरी।
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
2: ये सच है। मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
1: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
2: झूठ।
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
1: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे। उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया।
3: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
6: क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी अमृत वाला आ गया। अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया।
7: अरे मशकूब भाई,
8: जी जनाब,
7: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
8: लीजिए जनाब।
7: लाइए।

0: بس بس بابا شکریہ، پیاس بجھی. اچھا یہ لو پیسے رکھو.
1: جناب تھوڑے زیادہ دے دیے، یہ باقی رکھ لیں.
0: رکھو رکھو.
1: شکریہ جناب شکریہ،
0: گرمی میں پانی پلایا تم نے.
1: رکھو شکریہ
0: شکریہ.
2: امرت والا آ گیا.
3: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था. वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था. उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे. एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी. मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है. मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा. मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ.
4: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा.
0: मशकूब भाई.
1: जी जनाब.
0: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है.
1: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है. अल्लाह मियां खुश होगा. आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए.
0: लाओ. बस बस.
1: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप.
0: सही कहा मशकूक भाई.
1: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
0: अभी तक तो कुछ नहीं.
1: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं.
0: अरे नहीं नहीं
1: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब आइए आइए आइए.
0: भाई
1: जी
0: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं.
1: क्या बात करते हैं,
0: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है.
1: इसमें नेकी की क्या बात है?
0: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ.
1: ये तो मेरा फर्ज था.
0: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ.
1: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
0: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा.
1: अच्छा.
0: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो.
1: ये तो बड़ा नेक काम है.
0: अब ये लीजिए.
1: ये किताब, ये किताब किस लिए?
0: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है.
1: अच्छा.
0: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए.
1: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा.
0: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए.
1: तौबा तौबा तौबा,
0: वरना दवा का असर जाता रहेगा.
1: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा.
4: अरे भाई हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है.
5: जनाब
6: लाजवाब इंसान है वो.
4: क्या बात करता
6: है, क्या बात, बहुत अच्छे इंसान.
3: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया. उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा. जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा.
7: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है. हाँ, सख्त गलती की है. अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता. ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे. मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए. हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा. ऐसा ही करूंगा.
3: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया.
7: पैसा लाए हो?

0: यकीन मानिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
1: जो मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो।
0: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
1: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
0: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
1: बच्चे को गोद में उठाओ।
0: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
1: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
0: मर जाएगा ये।
1: उठाओ।
0: मर जाएगा अकीम साहब।
1: चलो निकलो बाहर।
2: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
3: अमृत वाला

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ। रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं। आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज। मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया? या खुदा माफी, माफी रहे मुझे। अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमाक।
0: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों

0: के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
1: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमाक
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं,
1: या खुदा माफ,
2: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा, उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोतुले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी भवानी पटना समय अपराह्न 5:30 प्रचार करछु। युव श्रोता भाई भणी मानक पई कार्यक्रम युववाणी आज एथिरे शुणी परिबे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञानिका।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣା ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁନୀଷ ଶର୍ମା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अच्छा दास बाबू, आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
4: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रहिथाय। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: पवित्र रथयात्रा अवसर रे विद्युत सुरक्षा नियमावली अवलंबन करंतु एवं सुरक्षित रहंतु।
7: ओडिसा रो विभिन्न स्थान रे अनुष्ठित हेउथिबा पवित्र रथयात्रा रो आयोजक मानंकु विद्युत सुरक्षा नियमावली पालन करबाकु अनुरोध करा जाउछि।
6: रथ को निर्धारित मार्ग रे सुरक्षित भाबरे नेबा पई स्थानीय विद्युत वितरण कार्यालय रे लिखित भाबे जणंतु।
7: पूजा पेंडल, यात्रा स्थली, होटल, दुकान बाजार अधिक जनसमागम स्थान रे वैद्युतिक उपकरण रो सुरक्षा जांच पई स्थानीय विद्युत निरीक्षकंकु लिखित भावे अवगत करंतु। शक्ति विभाग ओडिशा सरकारंक द्वारा जनहित रे जारी।
8: ओडिशा सरकारंक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानंकु सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान, मका, कपा, अदा, मांडिया, चीनाबादाम, हलदी ओ हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराई नियंतु। भाग चाषी, ऋणी ओ अणऋणी चाषी समस्ते निज फसलर बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स, लैम्प्स, बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चाषी पिछा 5 एकड़ जमीर फसल बीमा पंजीकरण

0: कारण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल एक टंका देवाक पड़िबो। अधिक विवरणी पाई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
1: अच्छा दासबाबू आपण को घरटा 1970 रे तयारी थिला राइट हले ए पजंत एते स्ट्रांग केमिति अछि। अच्छा दासबाबू आपण को घरटा 1970 रे तयारी थिला राइट हले ए पजंत एते स्ट्रांग केमिति अछि।
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखी दिली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहि बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: আকাশবাণী ভবানী পাটনা, আমার পরবর্তী প্রসারণ শুণন্তু সংস্কৃতি সম্বাদ আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রর ও পরে শুণবে আকাশবাণী কটক কেন্দ্রর ও আকাশবাণী সম্বলপুর কেন্দ্রর।
1: আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম, প্রবাচক যতীন শর্মা। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सर्वकारः प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्तेभ्यः दंड प्रदानार्थं त्वरित न्यायालयं स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासयत् यत् छात्राणां भविष्यरक्षणं सर्वकारस्य वर्तते शीर्ष प्राथमिकता। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः प्रावोचत् यत् सर्वकारः संसदि नीट सम्बद्ध प्रकरणेषु चर्चायै सर्वथा सन्नद्धः। मनीलायाम् आयोजिते आसियान मंत्रिस्तरीय सम्मेलने भारतम् आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुतायाः नीतिः पुनः प्रत्यपादयत्। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि सिंधु जलसंधेः विषये पाकिस्तान देशस्य वक्तव्येषु भारतेन प्रकटिता विप्रतिपत्तिः। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् अतिसीम्नि आतंकवादस्य समाप्तावेव यथावस्थं भवेत् जलसंधिः। अपि च ग्लास्गो कॉमनवेल्थ क्रीडाः अद्य सायं समारप्स्यन्ते। क्रीडा महोत्सवे तावत् 25+100 भारतीय क्रीडिकाः भागं भजिष्यन्ति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्तेभ्यः दंड प्रदानार्थं केन्द्रीय सर्वकारः त्वरित न्यायालयानां स्थापनं विधास्यति। सः दृढतया न्यगादीत् यत् छात्राणां भविष्यस्य रक्षणं सर्वकारस्य सर्वोच्च प्राथमिकता वर्तते। सामाजिक संजालीय पटले प्रधानमंत्री प्राकटयत् यत् देशस्य यूनां कल्याणात् भविष्याच्च अधिक महत्वपूर्णं किमपि नास्ति। दिल्ल्याः जंतर मंतर स्थले नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य छात्राणां जायमानस्य विरोध प्रदर्शनस्य मध्ये एतत् वक्तव्यं समागतम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् तेन सम्बद्धाधिकारिणः अस्मिन् विषये आवश्यक पदक्षेपान् उत्थापयितुं निर्दिष्टाः। श्रीमोदी दृढतया प्रावोचत् यत् ये यूनां भविष्यं हन्तुं प्रयतन्ते ते सर्वथा नैव त्यक्ष्यन्ते। सः प्रोक्तवान् यत् छात्राणां हितानां रक्षायै उत्थापितेषु पदक्षेपेषु एव एषः निर्णयः गृहीतः। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अद्य विपक्षी दलान्यालक्ष्य आरोपितवान् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे सर्वकारस्य आश्वासनानन्तरमपि विपक्षिभिः चर्चा अवरुध्यते। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः सः अवोचत् यत् सर्वकारेण चर्चायाः याचना अंगीकृता, किन्तु विपक्षः नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य चर्चातः पलायनं करोति। श्री रिजिजुः अवोचत् यत् कांग्रेस दलमपि चर्चावधौ स्वस्य याचनां वक्तुं शक्नोति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता केन्द्रीय मंत्री च जेपी नड्डा अकथयत् यत् सर्वकारः संसदि नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणस्य विशच्चर्चायै अस्याः समस्यायाः स्थायी समाधानाय च एकां सुदृढां नीतिं विधातुं पूर्णतया सन्नद्धो।

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन संपा राय जुहार पहला मुखिया खबर भिन भिन प्रसंग के नेकरी विरोधी मानकर हो हल्ला लगे संसद रो गृह कार्य बाधाप्राप्त परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट मामलार तुर्ती विचार लगे फास्ट ट्रैक अदालत स्थापना करबे केंद्र सरकार छात्र छात्री मानकर भविष्यत के सुरक्षित रखबारटा सरकारंकर सबनु पहला प्राथमिकता कहले प्रधानमंत्री देशर शिक्षा संस्कृति आउ विकास थी प्रसारण क्षेत्र रो गुरुत्व के सुरता करिकरि आज पालन करा जाउछे जातीय प्रसारण दिवस आउर जन्म बेदिन श्रद्धालु मानकु दर्शन देले महाप्रभु आइबा काल हेबार के थिबार बाहुडा यात्रा लागि शेष हेला प्रस्तुति एथर पूरा खबर संसदन विरोधी दल मानकर तरफ भिन भिन प्रसंग थी प्रतिवाद जारी रहबानु दुही गृह कार्य आयज भिल बाधाप्राप्त हेछि लोकसभा गृह कार्य के आइबा काल तक मुलतवी रखा जाइछि आज सकाल 11 बजे गृह कार्य मूल हेबार उतरु बाचस्पति ओम बिरला प्रश्नकाल मूल करबार लागि चेष्टा करथिले हेले विरोधी सदस्य मानकर हो हल्ला जारी रहबानु गृह कार्य बाधाप्राप्त हेतिला राज्यसभा न बिल समान परिस्थिति देखबार के मिलिथिला सकाल 11 बजे गृह कार्य मूल हेबार उतरु देशर भिन भिन जागान होइतिबार जबर वर्षा भूस्खलन बयड चड़क मरा बागिर विपर्जय थी बहुत जीवनहानी होइतिबार अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन गृह तरफ शोक प्रकाश करथिले विरोधी मानकर हो हल्ला जारी रहबान राज्यसभा गृह कार्य के भी आइबा काल तक मुलतवी घोषणा करा जाइछे परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट मामला थी संप्रुक्त दोषी विरोध थी सरकार कड़ा कार्यानुष्ठान नेबार सहित तार तुर्ती विचार लगी फास्ट ट्रैक अदालत स्थापना करबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक गणमाध्यम जरिए इटा घोषणा करिछन देशर छात्र छात्री मानकर भविष्यत के सुरक्षित रखबार सरकारंकर सबनु पहला प्राथमिकता आए बोली श्री मोदी कहिछन प्रश्नपत्र प्रघट घटना थी जरूरी कार्यानुष्ठान नेबार लगी संप्रुक्त कर्तृपक्ष आउ अधिकारी मानकु निर्देश दिया जाइछे छात्र छात्री मानकर स्वार्थ के नजर थी रखिकरि सरकार इ दिगे बहुत पदक्षेप नेइछन बोली प्रधानमंत्री कहिछन नीति आयोग तरफ प्रकाशित इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 थी ओडिशा देशर पहला पांचटा राज्य भितर ठान पाइछे 52.4 पॉइंट सहित ओडिशा 5 नंबर ठाने

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन महाप्रभुंकर पवित्र परंपरा और ऐतिह्यर सुरक्षा दिगे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं ट्रेडमार्क पंजीकरण विभाग तरफ श्रीजगन्नाथंकर सांगे जड़ित आउ पांचटा ना लगी ट्रेडमार्क अनुमोदन मिली इ ना माने हेला जगन्नाथ धाम श्रीक्षेत्र महाप्रसाद नीलचक्र और कोइली वैकुंठ महाप्रभुंकर सांगे जड़ित ना आउ पारंपरिक सुरक्षित रखबार सहित से सबुर अनधिकृत व्यवहार आ वाणिज्यिक अपव्यवहार के रुकबार दिगे इटा साहज करबा बोली श्रीमंदिर प्रशासन तरफ कहा जाइछे। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा दुईदिनिया कलाहांडी जिला गस्त थी आसिकी दुई नंबर दिन आज भवानीपाटनार शहीद रेंडो माझी मेडिकल कॉलेज आउ डाक्तरखाना सम्मिलनी कक्षन अंगनवाड़ी कर्मी मान संगे आलोचना करिछन। ई अवसर श्रीमती परिडा कहिछन अंगनवाड़ी कर्मी माने होचन सरकारी योजनार लास्ट माइल डेलीवरी सिस्टम फी अंगनवाड़ी केन्द्र के निजर घर बिजली पीबार पायन आउ सूर्यघर योजना सुविधा देवार के प्राथमिकता दिया। लांजीगढ़ रामपुर इलाकान मिशन शक्ति जरिए महिला मान लगी होम स्टे टूरिज्म जरिए आर्थिक सशक्तिकरण करा श्रीमती परिडा कहिछन। आज कार्यक्रम थी जिलार 13 ब्लक नु 690 का अंगनवाड़ी कर्मी सामिल होते। स्कॉटलैंड रो ग्लासगो ठाने आजठानु राज्य गोष्ठी क्रीडा प्रतियोगिता मूल हेउछि। ई 10 दिनिया प्रतियोगिता थी 74टा देशर 3000 नो एतका प्रतियोगी भाग नैछन। सेथिर भितरु भारत नु 225 जन प्रतियोगी रहितबार बेले ओडिसा नु 4 जन खेलाली भाग नैछन। धावक अनिमेष कुजुर जिमनास्ट तपन महांति तपेश्वर नाथ दास आउ प्रणति नायक भाग नैछन। पाणिपाग राज्यर भिन्न भिन्न जागाना दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रहबार वर्षा लागी रही छे। भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर जिलान अति जबर वर्षा होपे से संबलपुर देवगढ़ बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ सहित 17 जिलार गोटे जुड़े जगान जबर वर्षा होबार संभावना थिबानु पाणिपाग केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर। हीराकुद जलभंडार जलस्तर आज संजर 6 बजे तक 614.52 फुट रही था। ई समय थी जलभंडार नु सुलहटा गेट देकरी फी सेकेंड थी 270,314 घनफुट पैन छड़ा जाउथवर बेले 290,376 घनफुट पैन जलभंडार के आसुछे। शेषे मुखिया खबर फेर गए भिन्न भिन्न प्रसंग के नेकरी विरोधी मानकर हो हल्ला लगी संसद रो गृह कार्य बाधाप्राप्त। परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट मामलार तुर्ति विचार लगी फास्ट ट्रैक अदालत स्थापना करबे केन्द्र सरकार। आउर जन्मबेदीन श्रद्धालु मानकु दर्शन देले महाप्रभु आइबा काल हेबार कि थिबार बाहुड़ा यात्रा लागि शेष हेला प्रस्तुति। आजर आंचलिक खबरिन शेष हेला जुहार।

0: जम्मू काश्मीर केरलम मिजोराम त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होता मृत्यु नहीं शोक प्रकाश करते श्री राधाकृष्णन कहते वर्षा और बनार बहु धनसंपत्ति नष्ट केन्द्रमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह विक्षोभरत छात्र छात्री को नीट प्रश्नपत्र प्रकट घटन आलोचना आगे आसवाक आह्वान देते से कहते सरकार एगे प्रस्तुत अच्छा गणमाध्यम को निज प्रतिक्रिय डॉक्टर सिंह कहते गत 24 घंटा मध्य विक्षोभरत छात्र छात्री प्रतिनिधि आलोचना लगे 4 प्रस्ताव दि जाए आलोचना समय से एवं केंद्रमंत्री जेपी नड्डा उपस्थित रहिबे बोली से प्रतिश्रुति देइछन्ति
1: सरकार की ओर से क्या के लिए हम हर समय तैयार हैं सरकार के दरवाजे खुले हैं दिस इज अ स्टैंडिंग इनविटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स आप इसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है प्रत्येक विषय को लेकर आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार है वी
0: त्रिराष्ट्रीय गस्तर शेष पर्यायर आज दुईदिनिया गस्तर आसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानियार बुखारेस्टे पहुंची राष्ट्रपति सेठे पहुंचा पर राजकीय सम्मान प्रदान गस्त काल में राष्ट्रपति मुर्मू तांको रोमानिया प्रतिपक्ष निकुसोर डेन प्रतिनिधिस्तरीय आलोचना करिवार कार्यक्रम रही यह आलोचना पर केतक बुझापत्र स्वाक्षरित हो राष्ट्रपति मुर्मू सम्मानार्थे आज रोमानिया राष्ट्रपति रात्रभोजी आयोजन कर आसंता काली राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यावसायिक मंच को उद्बोधन देवासह सेठार रहुतिवा भारतीय संप्रदायर सदस्य मानंक सह भाव विनिमय करिवे राष्ट्रपति गस्त उभय देश मध्यरे विभिन्न प्रमुख क्षेत्र समेत वाणिज्य और पुंजनिवेश प्रतिरक्षा सूचना प्रजुक्ति विद्या नवीकरणीय शक्ति शिक्षा विज्ञान और नवसृजन आदि क्षेत्र में संपर्क आहुरी दृढ़ करिव बोली आशा कराउछि आलोचना और कूटनीति मध्यम पश्चिम एशिया सृष्ट परिस्थितिर समाधान उपरे भारत गुरुत्व प्रदान करिछि विशेषकर आंतर्जातिक जलमार्ग को निरापद और प्रतिबंधक मुक्त रखा उपरे भारत गुरुत्व देछि मानिलाठारे 21वां पूर्व एशिया सम्मेलन को उद्बोधन दे वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते सामुद्रिक जलमार्ग में जहाज और भित्तिभूमि उपर आक्रमण कौन प्रकार क्षमणीय नुहे से कहते विभिन्न द्वंद्वात्मक परिस्थिति जो विश्व अर्थनीति प्रभावित होई तबे भारत आंचलिक स्थिरता और मुक्त विकसित भारत प्रशांत महासागर अंचल निजर प्रतिबद्धता प्रकाश कर श्री जयशंकर कहते म्यांमार उपजिता समस्यार राजनैतिक समाधान को भारत समर्थन करुच्छ चलित वर्ष भारत 2 स्वतंत्र पूर्व एशिया सम्मेलन आयोजन करुच्छ कोचिठारे सप्तम सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग सम्मेलन और लोथाल सामुद्रिक ऐतिह्य पर्व पालन करने लगे भारत प्रस्तुत रही से सिक्किम्र नामचे जिला अंतर्गत समरदुंग जलविद्युत प्रकल्पर निर्माणाधीन टनेल भुशुड़ा घटन समस्त 25 जन मृतदेह उद्धार कर 4 धरी चली उद्धार कार्य शेष हो उद्धार कार्य केन्द्र सरकार और सिक्किम सरकार विभिन्न संस्था सामिल थे तेज यह घटनार कारण जाणी लगे सिक्किम सरकार पक्ष एक 4 तदंतकारी दल गठन कर आसंता 15 दिन मध्य तदंत रिपोर्ट दाखल लगे सिक्किम सरकार निर्देश देते जातीय प्रसारण दिवस अवसर में प्रसार भारती मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी गौरव द्विवेदी कहते गत 90 वर्ष प्रसारण व्यवस्था रेडियो टीवी और वर्तमान डिजिटल प्रसारण में पहुंची आकाशवाणी संवाद सह कथबार्ता बेले श्री द्विवेदी कहते प्रसार भारती भारत और भारत बाहर श्रोतामानंक लागि मनोरंजन सूचना और शिक्षाभित्तिक कार्यक्रम मान प्रस्तुत कर चली प्रसार भारतीर ओटीटी प्लाटफर्म वेब्स संपर्क में श्री द्विवेदी कहते 1.1 कोटी अधिक लोक प्लाटफर्म सामिल होती यह दिनक दिन वृद्धि पावर लगी प्रसार भारती उन्नतमान प्रजुक्ति विद्या व्यवहार कर श्रोता और दर्शक मान लगे कार्यक्रम मान प्रस्तुत कर
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का स्मरण करने का और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को अपने एफर्ट्स को दोबारा
0: मानवाधिकार को सम्मान दे समस्त सामान सुजोग सृष्टि करने उद्देश्य भारत निरापद समावेशी और समतुल्य क्रीड़ा व्यवस्था प्रति निजर प्रतिबद्धता प्रकाश कर स्कॉटलैंड ग्लासगोठारे राज्यगोष्ठी क्रीड़ामंत्री सम्मेलन को उद्बोधन दे युव व्यापार और क्रीड़ामंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य क्रीड़ा परिचालना क्रीड़ाविद कल्याण और प्रतिष्ठानगत सामर्थ्य वृद्धि दिगरे भारत दृष्टिकोण उपस्थापन कर मंत्री श्री मांडव्य खेलो इंडिया भली योजनार अवतारणा करी एक क्षेत्र में सरकार द्वारा ग्रहण करा जाइथिबा संस्कार एवं आंटी डोपिंग ढांचा विषय रे कहिछन्ति ସେ କହିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ନିପୁଣତାର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯୋଗଦାନକୁ

अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देश भर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या

पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी ये स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। चूंकि जल राज्य का विषय है इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंध कार्य नीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और DGA से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के

0: हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सब प्रायोगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमान मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akash.

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला, भारत के लिए पदक सुनिश्चित। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर पहला T20 मुकाबला अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली। आगामी टेस्ट क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीता। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाऊ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना को बाय मिला, जिसके माध्यम से उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत ने अपना पहला पदक सुनिश्चित कर लिया है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाय मिला है। इस बाय के जरिए उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन बाय मिलने के बाद महिलाओं के 75 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में सीधे पहुंची। ड्रॉ में सिर्फ 5 एथलीट थे, इसलिए लवलीना समेत 3 खिलाड़ी सीधे अंतिम 4 में पहुंच गए, जबकि बाकी 2 खिलाड़ियों को एकमात्र क्वार्टर फाइनल मैच खेलना था। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग नियमों के तहत सेमीफाइनल में हारने वाले सभी खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में ताफाकी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी, जहां स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाने का मौका होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा उन्होंने चीन के हंगझोउ में हुए 2023 एशियाई खेलों में भी रजत पदक जीता। वहीं ओपनिंग सेरेमनी के लिए जब आज भारतीय दल शानदार कपड़ों में मैदान पर उतरेगा, तो लवलीना और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू फ्लैग और बैटन बेरर लेकर चलेंगी। मीराबाई चानू ने बेहतर प्रशिक्षण के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया।
2: एक तरफ से तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमको इतना सपोर्ट दिया है कि हम पहले ट्रेनिंग करना जो भी चाहते हैं, वैसे हम पहले से ही 25 डे हम बर्मिंगम में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो जो क्लाइमेट एडजस्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है प्लेयर्स के लिए, कि हमारे इंडिया में बहुत गर्म है, इधर आके हम ठंडा है, तो एक वीक या 2 वीक लग जाते हैं इसको एडजस्ट करने में। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे गवर्नमेंट को कि उन्होंने ही पहले हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा है।
0: मीराबाई ने कहा कि ये प्रतियोगिता एशियन गेम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: मेरे लिए तो काफी डिफिकल्ट हो रही है कि अभी मैं 48 में खेलूंगी, फिर 49 में खेलना है, और फिलहाल अभी 48 के लिए मैं बॉडी वेट कंट्रोल करके रखना है, और एशियन गेम्स के लिए भी मुझे प्रिपरेशन करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, पर मैं पूरा कोशिश करूंगी मेरे तरफ से जो भी है, पर बहुत पास में है, तो मैं अभी भी जो ट्रेनिंग चल रही है मैं एशियन गेम्स की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ।
0: उन्होंने कहा कि खिलाड़ी प्रेशर से पार पाकर पदक जीतना चाहते हैं।
2: प्रेशर है, पर हमको पूरा कोशिश करूंगी प्रेशर को साइड में रख के, जो हमारी परफॉर्मेंस हमने करके आई है इसको, हमारी जो बेस है उसको स्टेज में लेके करने के लिए हम पूरा कोशिश करूंगी, तो ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो जरूर वेटलिफ्टिंग में सबका मतलब मेडल आ सकते हैं।
0: उधर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ग्लासगो में भारतीय सदस्यों के साथ साइकिलिंग रैली की अगुवाई की और भारतीयों से राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान चेयर फॉर इंडिया मुहिम में शामिल होने का अनुरोध किया। खेल मंत्री ने साइकिलिंग के महत्व के बारे में भी बताया।
3: भारतीय डायस्पोरा के द्वारा चेयर फॉर भारत करके हमारे साइकिलिंग से दुनिया को

0: दृष्टिकोण से संदेश दिया कि फिटनेस दुनिया के हर नागरिक के लिए जरूरी है।
1: अब सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी भारतीय टीम, लेकिन आज जिस प्रकार से नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए और गेंदबाजों ने कैसा किया प्रदर्शन आज?
2: जी प्रशांत, आज गेंदबाजों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। आज अशोक शर्मा ने भारत के लिए डेब्यू किया है। हालांकि उनका आईपीएल प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था और भारत के लिए उन्होंने आज डेब्यू किया, तो उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले गए 10 मुकाबलों में उन्होंने 22 विकेट चटकाए थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी पेस से प्रभावित किया था। इस आईपीएल में उन्होंने 154.2 की रफ्तार से गेंदबाजी करी थी। आज भी वो विकेटलेस रहे हैं, पर वी होप फॉर द बेस्ट कि हम देखेंगे अशोक शर्मा को कुछ अच्छा करते हुए। वहीं मयंक यादव ने 4 ओवर में आज 18 रन देकर 2 विकेट लिए और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
1: वहीं बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। वैभव सूर्यवंशी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, उनके दम पर उनको टीम में जगह मिली और आज धमाकेदार पारी भी खेला वैभव ने। कैसा रहा भारत का बल्लेबाजों का प्रदर्शन?
2: देखिए बल्लेबाजी क्रम की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा आज जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेली। 19 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। वैभव को ये मैदान बहुत ही ज़्यादा रास आता है क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने यहाँ पर 175 रन की पारी खेली थी, जो सबको याद होगी। और उसके बाद ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 35 रन और वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों पर 28 रन। तो इंग्लैंड और आयरलैंड से हारने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ ये जीत भारतीय टीम को बहुत ही मनोबल प्रदान करेगी और आगे भी हम उनसे बेहतर प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारत ने पहला मुकाबला जीता है और उम्मीद करें कि 25 और 26 जुलाई को जो इस श्रृंखला का दूसरा और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, इसमें भी भारत जीत दर्ज करे और इस श्रृंखला को अपने नाम करे। उधर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप WTC 2027 का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में 9 से 13 जून के बीच खेला जाएगा। ऐसा दूसरी बार होगा जब ये मैदान चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट करेगा।
3: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की मेजबानी ओवल दूसरी बार करेगा। इससे पहले इसी मैदान पर वर्ष 2023 में यहां खिताबी मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। पिछले वर्ष आईसीसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ईसीबी को अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी के अधिकार मिले थे। WTC फाइनल के शुरुआती 3 संस्करण इंग्लैंड के अलग अलग वेन्यू पर आयोजित किए गए थे। लॉर्ड्स ने वर्ष 2025 का फाइनल होस्ट किया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी थी। न्यूजीलैंड ने साल 2021 में साउथहैम्पटन में भारत को 8 विकेट से हराकर पहला टाइटल जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में ओवल के मैदान पर 209 रन से जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी जीती थी। टेस्ट क्रिकेट के 150 वर्ष पूरे होने के कारण 2027 का संस्करण ऐतिहासिक होगा। ऑस्ट्रेलिया अभी WTC रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात कर लेते हैं स्क्वाश पर। अनहा सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में अनहात ने डॉयस ये सैन को शिकस्त दी। सुनते हैं सरफिरोजी की एक रिपोर्ट।
4: अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया की डाइस ये सैन ली को सीधे गेम में हराया। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली अनाहत ने अपनी प्रतिद्वंदी को 11-4, 11-8 और 11-3 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मिस्र की 5-8 सीड खिलाड़ी हबीबा रिजक से होगा। महिला वर्ग के कई अन्य मुकाबले भी रोमांचक रहे। मिस्र की हबीबा रिजक ने अमेरिका की शार्लेट जे को 4 गेम के मुकाबले हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं बेल्जियम की सवाना मोक्सहैम ने पिछड़ने के बाद शानदार करते हुए

0: हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से हराया। मिस्र की मलिका एलकाराक्सी ने अमेरिका की दिया यादव को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग में भी कई अहम मुकाबले खेले गए। टॉप सीड मोहम्मद जकारिया ने पाकिस्तान के नौमान खान को हराकर अगले दौर में जगह बनाई, तो फ्रांस के अमीर खालिद जोसेलिन ने इंग्लैंड के रॉनी हिकलिंग को सीधे गेम में हराया, जबकि हांगकांग की हेलेन टैंग ने मलेशिया की हार्लिन टैन को मात दी। हालांकि पुरुष वर्ग में कुछ बड़े उलट फेर भी देखने को मिले। भारत के आर्यवीर दीवान, जो टूर्नामेंट में 5-8 सीड खिलाड़ी थे, उन्हें अमरीका के यासीन शलाबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अमरीकी खिलाड़ी ने आर्यवीर को 11-4, 11-1 और 11-5 से हराया। इसके अलावा ब्राजील की लॉरा सिल्वा को मलेशिया की विटनी विल्सन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वहीं सऊदी अरब के मोहम्मद अल नासफान ने इंग्लैंड के डायलन रॉबर्ट्स को 5 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मुकाबले 20 से 25 जुलाई तक खेले जा रहे हैं। इसके बाद 26 से 31 जुलाई तक पुरुष और महिला टीम प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। भारतीय पुरुष टीम इस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ उतरेगी। पिछले वर्ष इस टीम ने काहिरा में टीम 13 वर्ष के बाद कांस्य पदक अपने नाम किया था। और अब बात शतरंज पर। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के चौथे संस्करण के 7वें और आखिरी राउंड में कल भारत के अर्जुन एरिगेसी के साथ मैच ड्रॉ कराने के बाद फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलरेजा फिरोजा चैंपियन बने। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: अलीरेजा फिरोजा को खिताब जीतने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत थी। 41 सालों के बाद मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ और फिरोजा ने 7 राउंड में 4.5 पॉइंट्स हासिल किए। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं गवाया। इस दौरान उन्होंने 2 जीत हासिल की और 5 मैच ड्रॉ खेले। अंतिम दौर में अलीरेजा फिरोजा के पास भारत के अर्जुन एरिगेसी और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दू सत्तरोव पर आधे अंक की बढ़त थी। खिताबी दौड़ निर्णायक रूप से फिरोजा के पक्ष में तब झुक गई जब अब्दू सत्तरोव रूस के दिमित्री आंद्रकिन के खिलाफ 47 शालों में हार गए। अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी के दौड़ से बाहर होने के बाद फिरोजा को एरिगेसी के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी। उन्होंने सुरक्षित रूप से खेल को रुक एंड पॉन एंड गेम तक पहुंचाया और फिर पॉइंट बांट कर खिताब अपने नाम कर लिया। आंद्रकिन ने इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गवाया। वहीं अर्जुन एरिगेसी के साथ 4 पॉइंट्स पर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। अब्दू सत्तरोव ने भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन और एम प्रणेश के साथ चौथा स्थान साझा किया। तीनों ने 3.5 पॉइंट्स हासिल किए। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोता, आपको बता दें कि मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा। 7 में से 3 गेम हारने के बाद वे 2 पॉइंट के साथ स्टैंडिंग में सबसे नीचे रहे। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी की हार के साथ भारतीय खिलाड़ियों का सफर आज समाप्त हो गया। पीवी सिंधु शुरुआती बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रही और चीन की खिलाड़ी चेन यूफेई से 3 गेम के कड़े मुकाबले में 21-16, 20-22 और 18-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य कैनेडा के विक्टर लाई के खिलाफ 21-19, 21-11 से, जबकि आयुष शेट्टी आयरलैंड के नेट ग्वेन से 15-21, 21-13 और 22-20 से हार गए। और अब बात निशानेबाजी पर। ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पहले दिन कल पुरुष 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाऊ ने स्वर्ण पदक जीता। चीन के ही झांग चांगहोंग ने रजत पदक पर निशाना साधा। सेंग ने क्वालिफिकेशन राउंड में 637.5 पॉइंट के साथ टॉप किया और फाइनल में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। स्वीडन के विक्टर लिंक ग्रेन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। हांगझोउ निशानेबाजी विश्व कप 28 जुलाई तक खेला जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं?

0: और हाँ, याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
3: At the level of the Prime Minister,
4: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
5: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने

0: के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र, बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल SIT ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड TDB के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व TDB अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का और साथ ही

0: साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
1: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight,

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: रिहान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हरित चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हरित हाइड्रोजन की काफी बात हो रही है, तो एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि हरित हाइड्रोजन क्या है और इसमें हरित

0: क्या है?
1: देखिए, हरित जो है ना, ये जितने भी आजकल डेवलपमेंट हैं और जो भी हमारी चिंता है वो पर्यावरण को लेके, और पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो अभी जो आप हरित सुन रहे हैं, हरित का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के होने और ना होने से, जैसे कि किसी एनर्जी को हम या किसी ऊर्जा को हम हरित ऊर्जा कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा वो हरित ऊर्जा है। इसी तरह से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली गैस है इंडस्ट्री में। जो इसको बनाने का तरीका अभी तक चल रहा था उसमें CO2 एमिशन था, जो कि पर्यावरण, जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का जो चैलेंज है। तो हरित हाइड्रोजन का मतलब ये है, हाइड्रोजन ऐसे तरीके से बनाई जाए जिससे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना, ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले हैं, वो हरित हाइड्रोजन कहलाएगी।
0: अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही है, और देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा कदम भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ रख कर देखें तो देश में इसकी जो अब तक की प्रगति हुई है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का चैलेंज है यानी ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बिजली सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो बनती थी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत थी, तो हम बिजली सेक्टर को ग्रीन कर रहे हैं, हरित कर रहे हैं, यानी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि आप अगर उनको इलेक्ट्रीफाई कर दो, जो पहले बिजली से नहीं चलते थे, अब अगर बिजली से चलने लगे तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा। जैसे कि सबसे आम एग्जाम्पल आपके सामने है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर हम अपनी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल से ईवी की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ईवी से अगर वो चलेंगी तो एमिशन नहीं होगा या कम होगा। और अगर वो बिजली जिससे ईवी चार्ज हो रही है वो हरित है, ग्रीन है, जो सोलर विंड या हाइड्रो से बनी है, तो आपको डबल एडवांटेज हो गया कि आपने डीजल और पेट्रोल के एमिशन भी हटा दिए और इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन हुई। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप इलेक्ट्रिफाई नहीं कर सकते हो सीधे सीधे, जिनको हम लिटरेचर में हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं, जिनको मुश्किल है जिनके एमिशन इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कम करना। उनमें ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, और सीमेंट है, स्टील है, फर्टिलाइजर है। तो हाइड्रोजन वहां जो इस्तेमाल होती है वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है, क्योंकि उसको बनाने में फॉसिल फ्यूल, जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो उन सेक्टर के कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाहते हैं।
0: जी, जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर की बात करते हैं तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए, और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम अब लेकर के चल ही रहे हैं?
1: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक हैं, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली चीज। कैसे होंगी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 हजार मेगावाट से ऊपर चले गए हैं, और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है। 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक

0: है, फिर 2047 का भी है। 2070 में आप जानते हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो,
1: जी
0: नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे भी तो उनको एनवायरमेंट में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाएगा, तो ये भी टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली हम बना रहे हैं सोलर और विंड से, उसको इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे, एक तो हमने बिजली के एमिशंस को ख़त्म कर लिया, और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशंस हो सकते थे उन्हें ख़त्म किया। इसके अलावा सोलर के साथ क्या है कि वो दिन में है, जितनी देर सूरज की रोशनी होगी उतनी देर आप बिजली पैदा कर सकते हो उससे। तो हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दिन में बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई, लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको, पवन ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है पैनल जो इस्तेमाल होते हैं वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है जो मैंने बताया जो पानी को कन्वर्ट करेगा, उसको लेके कि यहीं देश में बने उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर भी मिशन काम कर रहा है, और दोनों ही सेक्टर जो है ये रोजगार देने वाले भी हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
1: रेहन जी, अभी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही हरित हाइड्रोजन ट्रेन को भी झंडी दिखाई थी। तो इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक उपलब्धियों का साझा करने का मंच है, या फिर भविष्य की योजनाएं हैं, जो रोड मैप है उनको साझा करने की दिशा ये प्रदान करेगा?
0: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है, जिसको अपनी ऊर्जा जरूरतें ही पूरी करनी थी, और साथ में ये पर्यावरण कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए, उन दोनों को देखते हुए जितनी तेजी से हमने ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जिसे कहना चाहिए हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है, तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीज़ों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात ये कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो, ये सब बहुत बड़े काम है, इसमें अंतरदेशीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे से सीखना समझना, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है।
1: आप जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं को हम ये जरूर बता देंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक सदस्य देशों के रूप में काम करता है, और दुनिया के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में भी हमारा नाम शामिल है। तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका क्या निभाई जा सकती भारत के द्वारा, खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और सरकार ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रही है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें।
0: भारत ऑलरेडी इसमें कई सेक्टर में नेतृत्व की तरफ है, और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नेतृत्व भारत का ही है, और ये भारत की ही पहल पर बना, और बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब तो 120 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं, और जो हमारी लर्निंग्स हैं जो हमने किया वो हम साझा करते हैं उनसे। उसके अलावा एक और भारत का इनिशिएटिव है, इसी से रिलेटेड, उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी भारतीय पहल है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें क्या है कि आइडिया ये है कि सूरज तो कभी नहीं ढलता है, आज यहाँ नहीं है तो दूसरे देश में चमक रहा है, नहीं तो तीसरे देश में चमक रहा है, तो कैसे हम एक दूसरे की मदद से उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब मैंने बताया, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी, वो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स की हो ग्रीन हाइड्रोजन की, उसमें भी तेजी से बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे सामने मौका है कि हम इसमें भी नेतृत्व प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: रेहन जी, वापस अगर हरित हाइड्रोजन की हम बात करें, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन, जैसा कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और आगे चलकर के जैसा आपने

0: कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है वो उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है और साथ ही हम कितना आगे तक जा सकते हैं?
1: देखिए, आवश्यकता की तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के हालात बने या बनते रहते हैं जियोपॉलिटिकल, उसमें ऊर्जा सुरक्षा तो सर्वोपरि है और ऊर्जा सुरक्षा पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और हमें जरूर इस पे आगे बढ़ना होगा, करना होगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में शुरुआती दौर में हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप फेज में थे, जब हम ये देख रहे थे कि सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी और जो है वो कितना हम यूज कर सकते हैं, कैसे प्ले आउट करेगा। लेकिन उसके बाद फिर 2014 और 15 के बाद जो हमारा ना वो एक तरह का एक्सपेंशन फेज था। आज आप देखें कि सोलर एनर्जी एक आम तौर पर एक्सेप्टेड सिस्टम है, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, सरकार की मदद है, किसानों और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो घरों में लगा रहे हैं। और आप देखो 50 लाख के करीब तो रूफटॉप सोलराइजेशन हो गए, किसान भी लगा रहा है। तो ये अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हमारे मेन सिस्टम रहेंगे और हमारे सिस्टम इसके इर्द गिर्द ही डेवलप होंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ ये कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की तरफ एक कदम है लेकिन पर्यावरण की तरफ भी कदम है, मगर साथ साथ ये हमारी नई ग्रिड जो हम बना रहे हैं, ये जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा होगी मेनली, उसमें भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
0: सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में सोलर मॉड्यूल पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, ये जो उपकरण है, इन्हें घरेलू स्तर पे अगर बढ़ावा मिलेगा तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो स्वयं का कुछ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी यानी आम लोगों में उसकी पूरी तरह पहुंच हो जाए, उसमें उसके पर्यावरण के एंगल के साथ साथ उसके पैसे का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोग ये भी देखते हैं, जैसे हमने सौर ऊर्जा को किया, आज वो सबसे इकोनॉमिक, सबसे कम कॉस्ट वाली ऊर्जा स्रोतों में से है, तो वो पिछले जो 10-12 सालों की जो डेवलपमेंट थे उसी से हुआ। इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि अभी कोशिश ये है कि इसकी कॉस्ट ग्रे हाइड्रोजन के बराबर या उससे भी कम लाई जा सके। उसी की तरफ ये घरेलू उत्पादन जो आपने भी बताया, PLI और सब स्कीम से हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर को भी बनाया जाए जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर वो उसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक स्टार्टअप स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है, MNRE की स्कीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसमें छोटे स्टार्टअप्स, नए नए आइडियाज को भी समर्थन, ना कि तकनीकी सपोर्ट दिया जाएगा बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक बहुत हैपनिंग और एक्टिव सेक्टर है और इसमें बहुत काम हुआ है और आगे भी बहुत काम होता रहेगा, और हम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण बचाना और साथ साथ जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: रिहान जी, बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हमेशा मन में होता है कि यदि कोई नई चीज आ रही है तो आम लोगों तक पहुंचे वो, जैसे हरित हाइड्रोजन, आपको लगता है कि बहुत ही जल्द ये सामान्य लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी?
1: आम आदमी के लिए डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कम है, क्योंकि आप देखिए वो इंडस्ट्री में यूज होगा या बड़े ट्रांसपोर्ट में भी बड़े लेवल पर होगा आम आदमी के लिए। लेकिन कुछ जो कार है, जैसे गाड़ी, उसके अंदर हाइड्रोजन के इस्तेमाल में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन वाइडर एक्सेप्टेंस की तरफ है और अच्छा इसका भविष्य है।
0: रिहान जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: Countrywide.

0: सखा सखा तुम्हें एते दरिद्र ही सुधा तुमर बाल्य सखा कृष्ण को लवे मात्र फुलिन तुमर कष्ट हृदय मोर असह्य है सखा तुमर दुर्दशा अचिरे खंडन करी निश्चय खंडन करी
1: प्रभु आपणा जेपरी अन्यमनस्क कौन भावुंट श्रीमुख कमल एपरी सुखी जा कहीं प्रभु
0: ना कि तो भावना ही देवी
1: आपण मायारे तो हर ब्रह्मा पशिपारती ना तो सामान्य मुबा कौन बुझी तेब अधीनाथ कपट न रखी कहत देव कि विपद पड़ी
0: ना रुक्मिणी विपद नुह संपद
1: जेबे संपद तेबे चिंता कहीं प्रभु
0: सखी से तो अमूल्य ताको स्वर्ग मर्त्य रसातल तुलना देवा को किछी नहीं

0: नारायण नारायण।
1: देवर्षि
2: प्रभु
1: शुभाशुभ प्रकाशंतु।
2: प्रभु आपणंक कृपारु समस्त मंगल। मोर त्रैलोक्य भ्रमण करिबा तो पेशा, तेबे बहु दिनरु आपणंक साक्षात हेइ नथिबारु मु चली आसिली, किंतु आपण एपरि बिव्रत काहे कि प्रभु?
1: ना देवर्षि ना। मोर बाल्य सखा सुदामा बहु काल परे मते दर्शन करिया पई आसुछंती, विपदरे पड़ी से मते डाकुछंती। नदी प्रबल बेगरे पड़ुछि, नाउरी जदि न थाए तेबे सखा मोर फेरी जिबे। देवर्षि मते जिबाकु दियो,
2: मते मध्य संगरे नियंतु प्रभु।
1: ना ना देवर्षि, मु तुमको परिस्मरण करिबी, सखांक आगे विपद रक्षा करी सारे तापरे।

0: सखा आज मोर सुप्रभात जी तुम पर सखार मुख कमल दर्शन आउ पदर्ज प्राप्त हेली सखा तुम्हें थरुच कहीं कि
1: कहीं ना तो सखा
0: सखी फले अच्छा तो सात्यकी शीघ्र अंतपुर खबर दि सुना झरी पानी आनी सखा चर्चा करंतु
1: सुमती तु कि विपद रे आनी मते पकेलु एटु किपरि मु उद्धार हेबि
0: रुक्मिणी देख एई मोर बाल्य सखा सुदामा यांकर कथा तुम कहुथिल ना चाहिछ कौन शीघ्र चरण धौत कर दियो चाहिछ कौन।

0: हरि, हे कृष्ण, हे सका, तमे मात्र मोर सा, मो स्वामी को शीघ्र फेरै आण प्रभु, शीघ्र फेरै आण।
1: सखांक विरहरे सखी सुमति बड़ व्याकुल हो पड़े। जाऊँचि सन्यासिनी बेसरे तांको देखा देवी, तांको गृहरे रही दुख दूर करिबे।
0: किए सन्यासिनी मो पाखकु कहीं आसुचंदी? किए तमे झियो?
1: मा, मु जने दरिद्रा, मत टिके तुम घरे आज स्थान दब, मु सका उठे चली जी।
0: झियो, तुम घर को उठी।
1: मा, मो घर बहुत दूर, पोड़ा करम तो कौन कह।
0: तुम स्वामी
1: से कथा तुंडरे थरनी मा, तांकरी पाई तो इत्ते सॉरी।
0: तुम रूप तो एपरी, सीए कहीं अनादर कले?
1: मा, पुरुष मान स्वभाव से तुम स्वामी अच्छा?
0: हाँ अच्छा, मुँ द्वारिका को पठे चाहे चाहे थकी गली।
1: ताहले किछि चिंता ना, मते टिके आश्रय दियो।
0: कौन करिबे, अतिथि को अनाहार रे किपरि रखिबे? पूर्व जन्म रे की पाप करिथिली, ए जन्म रे ए कष्ट भोगिबाकु होउछि। दी दिन हला पिला मानकु थरे अनाहार रे अछि, आंकु बा कोन देबि? झिया, तमे टिके बस, मु आसुचि।
1: मा, ए समय रे कुआडे जीवो?
0: घरे पानी नहीं, काठो नहीं, आनी बाकू जीवी।
1: मते भंडे बाकू बसी चो मा, जे उते पाए मनरे कष्ट, से ऐसा भगवान अच्छी रे मेंटे देबे। निया, मो कानेरे मुठिया चावल अच्छी, ताकू रांधी सभी खाइबा, सकाळे जेणे इच्छा जीवी।
0: मा, ये कौन? मुसीना तुमर चर्चा करती, तुम्हें चर्चा कर?
1: मा, जदि सेपरी भाव मनरे आणिबो ताहले मु जाउची।
0: ना मा,

0: किलो माउसी एत बड़े एकुटिया केही तो कुटे पाखरे नाती एटी कौन करछु
1: ना आउ हबो नहीं एपरी कथा तो कहीं किपे सुनी नथिली किपे देखी नथिली
0: ए माउसी कौन देखी ना हो सुनी ना हो
1: जा रे तो बटरे तू जीबू मौते पचारी बा दरकार कौन
0: माउसी कहना मोरा नटी
1: अरे भाईया रंकुणी बुढ़ी मरीबा को गले पोखरी को पानी सुखी जाए
0: हाँ लो माउसी अभागा छुई दिले तो महा महा समुद्र भी सुखी जाए
1: अरे बापो इत्ते बड़ो बोझने केते दूर जीबू
0: माउसी ए गांरो सुदामा गोसेंग को घर किए
1: हरे बापो सी गांधी
0: माउसी तुम्हें तंको घर नहीं की
1: हरे बापा से कितने बैठे रहे अच्छुंदी
0: गोसे ये जिनिसों सब तंको घर को पढ़े चंदी
1: हाँ
0: देखिला बड़ों को तंको घर नहीं पोखरी कुड़े रहतिया उन्हें एक कुटिया बा बा बा बा अच्छा घर नहीं तो
1: हाँ कोई बा बैठा पड़ी ची ना कोई बुक आए की
0: ना लो माउसी मोर दो सही ची चलो घर को चलो
1: हाँ चल चल तो ना कौन करी बापा
0: मोना मोर उपो देखी मो ना कौन है तिबा कहिलो माउसी
1: केमिति कोई भी बापा माँ तो ना कौन रखी तिबे
0: बापा माँ ना रखी चंती कानू हेले आउ समस्ते परा पते कालिया बोली डाकु चंती मो कौन देखिबो को एते असुंदरिया माउसी
1: नाही रे तते देखिले तो मनुष फोकस सु फुली जीवो तो कथरे तो मनुष किणी हे जीवो रे
0: माउसी आउ केते बटो जीवो कांधमुर कट कट कलाणी गोसे कौन देइछंती के जानी
1: ओ हेती से जो कुड़ियाटी देखा जाउ छी सेठी की चाल बापा
0: ओहो सेठी माउसी तालिका देखी तमर जिनिस तक रखी दियो
1: पुअ तोर केते मूल हला
0: गोसेंग कठरो मु आगुरु छिंडे नेचे माउसी तमे जिनिस रख मु चालीली
1: पुअ सुन सुन तो घर को उठी
0: मो घर मो घर होची वृंदावन जाति रे मु गोपाल आसुची माउसी बेल उछ रहुची कितने घर जीवा कोची आसुची
1: पुआ गोटे कथा रखिबुनी केते बाटरु आइचु हालिया हे पड़ीथिबु तुंड रे किछि न दे चली जिबु
0: छी माउसी से कथा कहनी मते जे से न करे मु घर द्वार फुली ता घर जे रही जाए
2: कहा सतरे कथा हो जो मा
1: वृंदावन रु भारुआ आसी छि जिया सीए सब पठाई जंती
2: वृंदावन रु किया आसी छि मा ओ तुमे
1: तांको चिन्ही छु मा
2: तांकरि पाइन त मोर ए दशा नहले कोन मु सन्यासिन हे तम घरे आश्रय नै थांथे
1: भलो हला तम दि जण कर साक्षात हे गला
0: आ मु आउ वृंदावन को काहे के जेबे माउसी एठी रहिबे चूठेले मूल लागि पेट पोसिबा त कथा तमरे भंगा कुड़ियाट को सजाड देले तमे कोन मुठा खाइबा को दबनी माउसी
1: तम दी जण कर हाबो भाबो देखि मते केमिति केमिति लागुची
0: पिला बेले ना मोर टिके चोरी भाव थिला माउसी या घरु ता घरु चोरी खे जाउथिले सेथिपे माटु खूब माड़ खाइछे आउ से प्रकृति नाही तम घर भी से जिनिस नाही
1: कौन
0: सरल बणी
1: नाही रे बापा से अपूर्व जिनिस ए गरीब कुड़िया

0: ଶୁଣିଲେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ମୂଳ ରଚନା ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ବେତାର ରୂପାନ୍ତର ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ପ୍ରଯୋଜନା ରମାପଦ ନନ୍ଦ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରମାପଦ ନନ୍ଦ, ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମିତ୍ର ଏବଂ ନମ୍ରତା ଦାସ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।
2: विषय पर अपनी बात।
3: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
4: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में

0: श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।